अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है हम में से कितने लोग सुबह उठते ही सबसे पहले यस्टरडे की चिंता करते हैं? कल उसने मुझसे क्या बोल दिया था, कल मेरा ये काम रह गया था, कल ऐसा हुआ था, कल वैसा हुआ था। तो सुनिए दोस्तों, कल जो था वो एक ड्राफ्ट था और वो कल की बात थी, और आज जो सुबह मिली है ना, ये एक ब्लैंक पेपर है। अगर पुरानी गलतियों को बार बार लिखते रहेंगे तो नई कहानी कब बनेगी? आज का फंडा बहुत सिंपल होना चाहिए, पास्ट को डस्टबिन में डालिए और आज को रिस्टार्ट कीजिए। कल क्या हुआ, फॉरगेट अबाउट इट, और आज क्या हो सकता है, लेट्स फोकस ऑन डैट, राइट? आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ ये ट्रैक एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी सताक्षी के साथ। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: इटापन सुन रहे हैं आप मेरे साथ, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय करें। आई होप कि आपको इस मॉर्निंग मजा आ रहा होगा, और जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया है उन सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप आ गए हैं इटापन में सताक्षी के साथ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज सुबह उठते ही आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आया, तो क्या आप कहेंगे? मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा, अपने बॉयफ्रेंड, अपनी ऑफिस की बॉस, हाँ लेडी बॉस है ना, हाँ ज्यादा ध्यान तो फिर वहीं रहता है। तो मतलब कोई एक ऐसा गोल, कोई एक ऐसा ड्रीम, कोई एक ऐसी बात जो सुबह उठते ही सबसे पहले जहन में आ गई, यार आज तो मेरी ये वाली मीटिंग है, यार आज तो मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, जो भी वो पहला थॉट जो आपके माइंड में आया वो क्या था, मेरे साथ शेयर कीजिए ना रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। बताइए मुझे, स्पेशली फेसबुक पेज पर मैं एक्टिव हूँ, मुझे बताइए कि क्या है वो इस वक्त का थॉट जो आज सबसे पहले सुबह आपके माइंड में आया। मैं प्ले करती हूँ आपके लिए अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए।
1: पत्थर है वो मुझे रोक

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

जहाँ इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ हो रही हैं आज की सुबह कुछ जबरदस्त बातें। दोस्तों आजकल हम सब कितने बिजी हैं ना, टेक्स्ट मैसेज फास्ट हो गए हैं, लेकिन बातें बहुत छोटी हो गई हैं। हम हाउ आर यू तो मैसेज पर सेंड कर देते हैं, पर सामने वाले का जवाब ध्यान से सुनने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बोलते गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते सिर्फ बोलने के लिए हैं, समझने के लिए नहीं। तो आज अगर किसी अपने को कॉल करिएगा तो उसको सुनिएगा बिना किसी एडवाइस दिए, बिना किसी ताने के, देखिएगा वो रिश्ता कितना हल्का महसूस होगा आपको। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

अच्छा एक बात बताइए, आपको कभी लगता है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हैं पर बदले में आपको वो केयर नहीं मिलती? ये पेन तब होता है जब हम दूसरों से वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो हम उनके लिए फील करते हैं। दोस्तों, हर कोई आपकी तरह प्यार नहीं कर सकता, हर कोई आपकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता। रिश्तों में थोड़ी जगह देना और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करना ही पीस ऑफ माइंड की चाबी है। बाउंड्री सेट करना सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ केयर होती है। आइए इसी बात पर सताक्षी को सुनिए और सुनते रहिए ठाकुर रेडियो प्रेस वाणी 1701 AM पर।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

जय छात्र, एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर। दुनिया को खुश करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। तो आज का मेरा सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है कि बी काइंड टू योरसेल्फ। देखिए, आप परफेक्ट नहीं हैं और ना कभी हो सकते। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, पर पता है क्या, कोई भी आप जैसा नहीं है। आप अपनी कार्बन कॉपी हैं और जितनी मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए वो काफी है। और उसी काफी वाली मेहनत के नाम एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए छात्रंस। जी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी मेरे साथ।

फ्रेंड्स, ये था आज का इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ साथ। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी और आपको लेकर चलूंगी आपके सपनों की ओर। कल फिर से हम और आप करेंगे जिंदगी की कुछ खास और जबरदस्त बातें, लेकिन अब आज के सफर से ये वक्त हो गया है विदा और इजाजत लेने का। सो मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 FM।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना
2: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
1: ऐसा क्या खास है वहाँ
2: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
1: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते जी अच्छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम इस लिस्ट विच आंदा है जमाने को दिखाना है। नासिर हुसैन दे डायरेक्शन विच बनी जमाने को दिखाना है एक खूबसूरत रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है की है जिस विच ऋषि कपूर दे नाल पद्मिनी कोल्हापुरी सी। नासिर हुसैन अते ऋषि कपूर ने पहले ब्लॉकबस्टर हम किसी से कम नहीं सी ए दिती सी, इसलिए इस फिल्म तो भी बहुत उम्मीद सी। फिल्म दा म्यूजिक आई जी बर्मन ने बनाया सी अते खासकर ऋषि कपूर दा गाना दिल लेना खेल है दिलदार का जो पहाड़ा विच शूट किया गया सी एक कल्ट चार्ट बस्टर बनया हुआ है। रिलीज होने ते दर्शकों नूं कहानी थोड़ी पुरानी अते किसी पिटी लगी जिस दे कारण फिल्म थिएटर विच रिलीज हुई अते बॉक्स ऑफिस ते फ्लॉप हो गई। हालांकि बाद विच साल बाद ना ऋषि कपूर दी जबरदस्त डांसिंग स्किल्स उन्हां दी कॉमिक टाइमिंग अते बेहतरीन गाणिया ने फिल्म नूं यूथ ऑडियंस वल्लों वार वार देखण ते मजबूर कर दिता अते अज वी ए टीवी ते सब तो पॉपुलर हल्की फुल्की फिल्मां दे विचों एक है।

0: better together.
1: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
4: Only God can judge me, that right? Only God, baby. Nobody else.
5: ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ

0: Leave instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra. It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

इन द हाउस हाउस हाउस। हां जी, ते सी ऋषि कपूर दी दी बेस्ट फिल्मा जो पहला पसंद नहीं आईया पर बाद विच बहुत ज्यादा पसंद आईया है ना। तो तुसी दसो कि थानू इना दे विचो केड़ी सब तो ज्यादा पसंद है, फटाफट दे नाल छोड़ो।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

असर तो मैं चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: कहते हैं शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है,

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और आपकी आरजे निव्या आ गई है दोस्तों आपके पास, आपको एंटरटेन करने और एकदम मजेदार सी राइड पर लेकर जाने के लिए। जी हाँ, अभी हमारा जो सफर है ना 3 घंटे का, वो बहुत ही मजेदार रहता है। इन्फॉर्मेशन भी होती है, गपशप भी होती है, थोड़ा फन भी होता है। और गाने गाने तो इतने बेमिसाल और लाजवाब होते हैं कि उनकी बात ही क्या की जाए। जी हाँ, सो ऑफकोर्स ये सफर शुरू होने वाला है, तो जल्दी से आप भी सवार हो जाइए। और यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत हम सबसे पहले कैसे करते हैं आपको पता ही है, इनकेस आपको नहीं पता है मैं आपको बता देती हूँ। हम एक हेल्दी रिचुअल को प्रैक्टिस करते हैं, वो हेल्दी रिचुअल हमें सिखाता है क्या, काम रहना, फोकस्ड रहना, और कोई भी अगर चीज आपके दिमाग पे वे कर रही है तो वो नहीं करेगी, ये सिखाता है। सो आइए सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्या बात, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही अच्छा फील करते करते बिल्कुल खूबसूरत से गानों के सफर में अब हम आपको लेकर जाएंगे। मतलब सफर तो सुहाना है, लेकिन गाने जो हैं वो एकदम मजेदार है। सो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जिसका नाम है इश्क बुलावा। आई नो गाना बहुत ही प्यारा है, एंड ये हंसी तो फंसी का गाना है। और मूवी हंसी तो फंसी कैसी भी हो, लेकिन इस मूवी के गाने जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इश्क बुलावा से, और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप मुझे ये कहो कि निव्या शर्मा किसकी याद दिलाने की कोशिश कर रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और सुबह और शाम तो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह और शाम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। हम याद नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कुछ और करेंगे, हम यहाँ पर मौसम के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यादों में बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभार अच्छी और कभी कभार बहुत गड़बड़, तो यादों से थोड़ा सा दूर रहता है। यहाँ पर मौसम क्या कह रहा है आज का, वेल 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है, और अभी के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 21.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 19.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ दोस्तों, तो ये है आज के दिन के मौसम का हाल। लेकिन रात की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, 10% चांसेस बारिश के, जो कि ना के बराबर है। पर बीच में मुझे 5 बजे के करीब और 7 बजे के करीब कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होती हुई नजर आ रही है, उसके अलावा बाकी सब बढ़िया है, एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार यानी कि फेयर। और ये तो है आज का हाल। कल की अगर बात की जाए यानी कि फ्राइडे की, तो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 20% चांसेस है बारिश के, और सूरज एकदम खिलखिलाता हुआ चमचमाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ठंड में सूरज से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं होती है, मतलब अच्छी सूरज की रोशनी सनशाइन अगर आपको मिल जाती है ना, तो आपको ऐसा लगता है आप रिचार्ज हो गए हो, मतलब पूरी तरह से आपकी बैटरी जो है वो रिचार्ज हो गई है, और वैसा आपको लगने वाला है कल भी। सैटरडे को ऑन द अदर हैंड थोड़ी सी क्लाउडी सिचुएशन रह सकती है और 40% चांसेस भी हैं बारिश के, बट उसमें भी फेर बदल हो सकता है, आपको तो पता ही है। जी हाँ, सो ये है मौसम का हाल आज का और अगले 2 दिन का। अब आपको क्या करना है, वेल अगेन हमारी तरह चलना है एक और बहुत खूबसूरत गाने की तरफ। जी हाँ।

0: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਯੋਰ ਸੈਂਸਸ ਔਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 11th of August 2026. Everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो उमसॉक से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 Balaclava Street, वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब हम बिना देर किए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे और वो है आपके

फरमाइशी गीत, बेसिकली वो गीत जो हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगाते हैं. जी हाँ, वही गीत जो हमें ऐसा फील करवाते हैं कि वाह क्या लिखा है, वाह क्या म्यूजिक है, वाह क्या गायकी है. जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें मुझे आपकी फरमाइशें फील करवाती हैं. सो जल्दी से अपने पसंदीदा गानों के साथ आ जाइए, आप उसे फरमाइश भी कर सकते हैं और इनफैक्ट किसी को डेडिकेट करके उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज आपको फोन उठाना है और नंबर डायल करना है. नंबर है +9182888717701. आई रिपीट, +9182888717701. तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश. और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से हम तो शुरू कर रहे हैं फरमाइशों का सिलसिला, क्योंकि फरमाइशें आनी हमारे पास शुरू हो चुकी हैं. जो पहला गाना आज हम फरमाइशी प्ले करने वाले हैं, वो फरमाइश आई है, वो रिक्वेस्टेड सॉन्ग आया है, वो रिकमेंडेशन आया है हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी की तरफ से. जी हाँ, गाने का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे. आई डोंट नो, बट ये गाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई गेस ये तो विन विन हो गया, मतलब आपकी फरमाइश भी होगी अमला जी और मेरी भी हो गई. सो थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए. ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए ये हमारा प्रोग्राम और इसका हिस्सा बनते रहिए ऐसे ही. जी हाँ, ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना.

जी हाँ दोस्तों, और इससे पहले हम और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करें, मुझे लगता है एक चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हमें बात करना जरूरी हो गया है। और इसकी खबर जो है वो 2 दिन पहले ही जो है वो आई थी, और ये चाइना की तरफ से है। ऑफकोर्स जब भी हम जापान या चाइना की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या नया लीग से हटकर कुछ बना दिया है, और यहां पर उसी के बारे में बात होने वाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम जापान के बारे में नहीं बल्कि चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। चाइना ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स बिल्डिंग एन आर्टिफिशियल सन। जी हाँ, सो बेसिकली चाइना एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग बोलोगे कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया, आर्टिफिशियल सूरज, लाइक आर यू इवन, डू यू इवन नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? वेल आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इसीलिए मैं आपको बताना चाहती थी कि ऐसा भी कोई कंट्री करने की कोशिश कर रही है। सो चाइना ने जो है वो इस आर्टिफिशियल सन को जो है बनाने के लिए पहला स्टेप जो है, और पहला नहीं इनफैक्ट मेजर स्टेप जो है वो यहां पर ले लिया है, और सक्सेसफुली उसे कंप्लीट भी कर लिया है। और ये उन्होंने टेस्ट किया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट में। जी हाँ, सो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी सी हम फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो थोड़ी फिजिक्स की क्लास शुरू होने वाली है, आप भागिएगा मत। जी हाँ, सो ये जाइंट 582 टन का जो मैग्नेट है, इट्स अ की पार्ट ऑफ चाइनाज प्लान टू जनरेट क्लीन एनर्जी, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ ये बनाना चाहते हैं बाय 2030। जी हाँ, सो ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसीलिए ये एक नकली सूरज बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। जी हाँ, सो आपको मैं बता दूं कि इसे डेवलप किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के द्वारा, और ये चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का ही पार्ट है। और ये डी शेप्ड मैग्नेट जो है उसका जो डायमीटर है वो 21 मीटर्स लॉन्ग है और 12 मीटर्स वाइड है। जी हाँ, मैंने वजन के बारे में पहले ही बात कर ली है, 582 टन जो है इसका वजन है, लेकिन इसकी जो 21 मीटर्स जो है इसकी ये लॉन्ग है, यानी कि लेंथ है, और वाइड अगर हम बात करें तो 12 मीटर्स ये वाइड है। और आपको मैं बता दूं कि इट क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू कंटेन सुपर हीटेड प्लाज्मा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको क्रिएट करता है टू कंटेन सुपर हीटेड प्लाज्मा इनसाइड अ फ्यूजन रिएक्टर विदाउट लेटिंग इट टच द रिएक्टर्स वॉल। सो मतलब रिएक्टर की वॉल्स जो है वो वैसी की वैसी रहेंगी, उसको कोई टच नहीं करने वाला है, लेकिन यहां पर जो है इस प्लाज्मा को सुपरहीट जो है वो किया जाएगा, और फिर फ्यूजन रिएक्टर के साथ जो है उसे मिलाया जाएगा। अब ऑफकोर्स मैंने कहा था कि यहां पर थोड़ी सी फिजिक्स की क्लास शुरू होने वाली है, बट द थिंग इज कि आई रियली वांटेड टू लेट यू नो कि ये चीज जो है वो हो रही है और ये कैसे हो रही है। सो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगेन आपको समझ आने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिफिशियल सन जो है इज अ फ्यूजन रिएक्टर, जैसे मैंने कहा वो रिक्रिएट करता है सेम प्रोसेस को। अब मैं ये आपको बताने वाली हूं कि क्यों इसे आर्टिफिशियल सन कहा जाता है, मतलब सूरज, नकली सूरज इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें सूरज जैसी ही कुछ एक्टिविटी होने वाली है। सो ये जो है सेम प्रोसेस जो है वो करने वाला है, दैट पावर्स द सन बाय फ्यूजिंग हाइड्रोजन एटम्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जी हाँ, जो हाइड्रोजन को फ्यूज करता है, मतलब जो वो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे, वैसा ही कुछ यहां पर होने वाला है। तो आप लोग बोलोगे कि अच्छा निविया शर्मा, वेल हमें बहुत सारी चीजें समझ आ गई हैं, कुछ नहीं भी आई हैं, बट द थिंग इज जो मेन चीज समझ आ गई है वो ये है कि चाइना ने एक नकली सूरज बना लिया है। जी हाँ, मतलब बहुत ही मेजर स्टेप वो ले चुके हैं, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो इसे कंप्लीट भी कर लेंगे, एंड आई एम शॉक्ड, या फिर मैं कहूँ आई एम शूक्ड। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
11: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
12: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
13: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
12: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
13: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
12: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
13: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
14: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
15: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
16: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
6: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीवा के साथ। दोस्तों वैसे तो आज थर्सडे है और अगर ये बात मैं कल भी करती तो भी चल जाता, लेकिन मैं ये बात आज इसलिए करना चाहती हूँ कि कल शायद आपको टिकट्स ही ना मिले। सो ऑफकोर्स बात होने वाली है मूवीज की, इतना तो आपको पता चल ही गया है। मैं बात कर रही हूँ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, जो कि रिलीज हो गई है। और यहाँ पर इसको लेकर जो एक्साइटमेंट है वो इतना अव्वल है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप उसे नाप भी नहीं पाएंगे। मैं इतना कहूंगी कि अगर आप स्पाइडरमैन सीरीज के फैन हैं एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए, क्योंकि आपको टिकट मिलेगी भी नहीं अगर आप सोचोगे कि ओके वीकेंड पे कर लेंगे फिर मूवी देख लेंगे। क्योंकि अगर आप वीकेंड पे देखोगे तो आपको वीक डेज में मूवी देखने को मिलेगी, जो कि मुश्किल होता है क्योंकि काम होता है, जॉब होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ऐसे में अगर आप वीकेंड पे देखना चाहते हो मूवी, अभी टिकट्स बुक कीजिए, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मार्वल, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन सीरीज, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स टॉम हॉलैंड, जी हाँ, जो कि सुर्खियों में बने हुए हैं द ऑडिसी की वजह से। सो टॉम हॉलैंड के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मजेदार है, क्योंकि पहले द ऑडिसी में उन्होंने अपना जादू चलाया और एक ऐसा पर्सनालिटी अपनी शो की जो कि शायद हमने कभी देखी भी नहीं थी। मतलब टॉम हॉलैंड कैन डू वंडर्स इन हिस्टोरिकल मूवीज, ये तो हमें पता ही नहीं था। सो ब्रांड न्यू डे में, जो कि उन्हीं की एरिना है, यानी कि स्पाइडरमैन, ट्रेलर देखिए सबसे पहले और जल्दी से टिकट्स बुक कीजिए, और फिर मुझे मत बोलिएगा कि निवेश अरोड़ा तुमने हमें याद क्यों नहीं करवाया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन के जो फैन है ना, उनकी कमी नहीं है। सो टिकट्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप जल्दी नहीं करोगे। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए,

जी हाँ दोस्तों, मुझे इतना तो समझ आ गया है कि फीफा अथॉरिटी ने ट्रंप को मेडल क्यों दिया था। जी हाँ, मतलब वो नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन फीफा पीस प्राइज जो है वो फीफा के चेयरपर्सन के द्वारा ट्रंप को दिया गया था, क्योंकि वे दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी हाँ, सो वो कहते हैं ना, द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टूगेदर, वैसी वाली ही सिचुएशन है। मतलब ये है कि ट्रंप को भी पैसा बहुत पसंद है और फीफा के चेयरपर्सन को भी पैसा बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। सो अब सिचुएशन ऐसी है कि यहां पर हम बात करने वाले हैं फीफा के चेयरपर्सन की, जो कि लिटरली मनी हंग्री होने की वजह से कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि कल इसके बारे में अनाउंस किया गया और आज इसके बारे में बहुत सारी कंट्रीज ने अपना बायकॉट भी, यानी कि बायकॉट भी दिखा दिया। जी हाँ, यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि फीफा के जो चेयरपर्सन है वो कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, हम फीफा वर्ल्ड कप से बहुत सारे पैसे कमाते हैं और हम यू नो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मर्चेंडाइज के थ्रू और बहुत सारी और चीजों के थ्रू पैसा कमाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ना बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। मतलब लास्ट ईयर ही अगर हम बात करें, पिछले बार ही, तो $15 बिलियन फीफा अथॉरिटीज ने जो है इसमें कमाए थे, और इस बार की बात की जाए तो उसकी गिनती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब वो इंसान सोच रहा है कि ऐसे कैसे इन पैसों को बढ़ाया जाए, तो उसने प्लान कर लिया है कि ऐसा करते हैं, ये सारी चीजों को खुद डील करने के बजाय यहाँ पर फीफा की एक कंपनी बना देते हैं, फीफा इनको, और उसको जो है वो 20% शेयर उसके बेच देते हैं इन्वेस्टर्स को। और क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो फीफा का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी खरीद लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सच में अगर ऐसा होता है तो $4.2 बिलियन के करीब कमाई यहां पर फीफा अथॉरिटीज जो है वो कर सकती है। और क्यों कर सकती है? वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि फीफा के 20% शेयर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं। लेकिन यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, मतलब अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये है कि ये सेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होंगे तो बहुत सारी और भी चीजें होंगी, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें ज्यादा पैसा कमाना होता है। ज्यादा पैसा कमाने की वजह से वो फीफा के रूल्स भी चेंज कर सकते हैं। आपको याद है ना वो वाटर ब्रेक, याद है ना? जी हाँ, वो ऐसे इसीलिए हुआ है। लेकिन ऐसे और रूल्स जो है वो हो सकते हैं अगर इन्वेस्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, खरीद कौन रहा है? Well, सबसे पहले तो जोशुआ कुश्नर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के भाई हैं, वो सबसे पहले एक पोटेंशियल इन्वेस्टर की तरह सामने आए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पैसा लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, और अगर होगा तो मैं पूरा का पूरा ही पैसा लगा दूंगा। मतलब $4.2 बिलियन जोशुआ कुश्नर ही लगाने के लिए तैयार है। आप लोग बोलोगे कि अच्छा, अब इसके बारे में बाकी सारी कंट्रीज क्या कह रही हैं? चलिए हम आपको वो बताएंगे बाकी सारी कंट्रीज क्या कह रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बाकी सारी कंट्रीज कुछ अच्छे से तो इसे हजम नहीं करने वाली हैं, राइट? सो वी आर गोना टेल यू अबाउट दैट। पहले हम आपको गाना सुनाने वाले हैं।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड। Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
5: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
4: अरे वाह, इनका पता बताना.
5: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
7: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड है.
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार श्रीनिव्या के साथ. दोस्तों बात हो रही है फीफा कमेटी की, फीफा अथॉरिटी की, जो कि नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी ट्रंप के साथ थोड़े दिन रहकर आए हैं और ट्रंप वाली हरकतें कर रहे हैं. मतलब हर जगह से पैसा कमाना है, इधर से भी आए, उधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए. आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कैसे फीफा अथॉरिटीज ने मेडल दिया था, एक फ्रीडम मेडल जो है वो दिया था किसको, डोनाल्ड ट्रंप को. और मुझे समझ नहीं आया था कि फीफा क्यों दे रहा है, बट अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि जो फीफा का चेयरपर्सन है और ट्रंप की हरकतें जो है वो सेम है, एक ही ताली के चट्टे बट्टे. और जैसे मैंने आपको बताया कि फीफा के चेयरपर्सन जो है वो फीफा वर्ल्ड कप की एक कंपनी जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके 20% शेयर्स वो इन्वेस्टर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं. और उन इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ा पोटेंशियल इन्वेस्टर है जोशुआ कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का भाई है. लिटरली हर जगह धूम मुहम्मद चाहिए हुई है, मतलब अल्बेनिया में उनको जगह चाहिए और यहाँ पे उनको फीफा वर्ल्ड कप में शेयर चाहिए. हर जगह ट्रंप और ट्रंप के आजू बाजू वाले लोग जो हैं वो घुसे हुए. बट अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, सोच तो बहुत कुछ सकते हैं लोग, बट कामयाबी मिलेगी या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा. वेल, वक्त ने बता दिया है क्योंकि कल ही इसे अनाउंस किया गया और आज सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज बोल रहे हैं कि हम तो इसका पार्ट नहीं बनेंगे. अगर तुमने इन्वेस्टर्स को लाने की कोशिश की और अगर तुमने फुटबॉल को चेंज करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि हम बॉयकॉट कर देंगे फीफा वर्ल्ड कप को भी और जो भी चीजें आप ऑर्गेनाइज करते हो, जो भी खेल गेम्स तुम ऑर्गेनाइज करते हो, हम सब चीजों को बॉयकॉट करने के लिए तैयार हैं. सो आई डेयर यू और वी डेयर यू, जी हाँ, कि जो तुम करना चाहते हो तुम करके दिखाओ. वी डेयर यू, जी हाँ. अब ऐसे में फीफा का चेयरपर्सन क्या ही कर लेगा. अगर लोग ऐसा कुछ कर दिया कि लोग खेलने ही नहीं आएंगे, कंट्रीज पार्टिसिपेट करनी बंद कर देंगी, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा कमाने के चक्कर में ज्यादा ये थोड़ा भी गायब हो जाएगा. जी हाँ, अब मैं तो सच में देखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने कह दिया कि हम बायकॉट करने वाले हैं. सीधी सीधी बात है, तुम कुछ भी सोचो और उसी हिसाब से काम

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। मतलब खबरों की दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है और वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा चहल पहल वाले बने हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिकी सेना का दावा, जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का कड़ा जवाब दिया जा रहा है। जी हाँ, अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान की ओर से किए गए अचानक हमले के जवाब में ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सिटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये हमले मंगलवार को जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाकर ईरान की ओर से की गई गोलीबारी का करारा जवाब है। ताजा हमले ऐसे समय हुए हैं जब एक दिन पहले ही संघर्ष का दायरा बढ़ गया था। अमेरिका और सऊदी अरब ने सार्वजनिक तौर पर संयुक्त सैन्य हमले किए थे, जिनमें इराक में ईरान समर्थित गुटों को निशाना बनाया गया था। फरवरी में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले शुरू किए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इस संघर्ष को 5 महीने हो चुके हैं और इसके जल्द खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बुधवार को एक्सियोस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात की है। अधिकारी के मुताबिक खालिद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब तनाव कम करना चाहता है। पीबीसी ने इस बारे में व्हाइट हाउस से प्रतिक्रिया मांगी है। हालांकि कुछ समय तक शांति रहने के बाद संघर्ष एक बार फिर तेज हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: डिजिसेल, बेटर टुगेदर।
4: Who doesn't want to win free fuel or shopping vouchers to help you stay on top of the rising cost of living? Digicel is giving away one of 10 fuel and shopping vouchers worth $100 each every single week. Simply send a $30 top-up or $300 money transfer to your family and friends back home in the Pacific for your chance to win. Terms and conditions apply.
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
7: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है, एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू।

जी दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और यहाँ पर बात करते हैं वाइल्ड फायर्स के बारे में, जिसने यूरोप को परेशान कर दिया है, खासकर स्पेन और फ्रांस को। वहां पर जीवन जो है वो व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है। और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, ग्रीस के क्रीट द्वीप के रेथिमनो इलाके में लगी जंगल की आग से जूझते हुए दो दमकल कर्मियों की मौत हो गई। दोनों आग में फंस गए थे। जी हाँ, तेज रफ्तार हवाओं ने आग की लपटों को और भड़का दिया, जिसके बाद कई गांवों को खाली कराया गया। जी हाँ, दक्षिणी यूरोप में गर्मियों के दौरान जंगलों में आग लगने की ये एक और बड़ी घटना है। दक्षिणी तुर्की में भी मुगाला प्रांत में लगी आग के कारण फैथिए से अंताल्या जाने वाले मुख्य हाईवे को बंद करना पड़ा। एक अस्पताल के कुछ हिस्सों को भी खाली कराया गया। इस बीच स्पेन और फ्रांस में इस गर्मी की चौथी हीट वेव शुरू हो गई है। दमकल कर्मियों का दल उन बड़े जंगलों की आग को दोबारा भड़काने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें हाल ही में काबू किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि क्रीट में कई जगह आग लगी और ये तेजी से फैलती गई। सबसे बड़ा आग वाला क्षेत्र करीब 15 किलोमीटर तक फैल गया था। दमकल विभाग ने कहा कि जान गंवाने वाले दोनों कर्मचारी रेथिमनो शहर के पास पश्चिमी इलाके में काम कर रहे थे। ग्रीस के दूसरे हिस्सों में भी जंगल की आग लगी है। एजियन सागर के पारोस और लोसबोस द्वीपों के अलावा ग्रीस के मुख्य भूभाग के दक्षिणी शहर ट्रिफिलिया में भी आग लगी है। स्पेन में प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने राजधानी मैड्रिड के पास लगी जंगल की आग को बुझाने के लिए अगले 12 घंटे को निर्णायक बताया है। स्पेन के अविला प्रांत के बुर्गोहोंडो इलाके में अब तक 43,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन जल चुकी है। ये इलाका मैड्रिड से करीब 150 किलोमीटर पश्चिम में है। इसे अब स्पेन के इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी जंगल की आग माना जा रहा है। और इस साल स्पेन में अब तक जंगल की आग से कुल 2.7 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन जल चुकी है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मुझे एक और चीज के बारे में बात करनी है। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा तुम्हें तो हमेशा ही बात करनी होती है, कभी ये भी कहा करो कि अभी हमें बात नहीं करनी है। अरे मेरा काम है बोलना, मैं तो बोलूंगी ही और आपको सुनना भी पड़ेगा। तो बात ये है कि रामायण का डिटेल्ड ट्रेलर आ गया है, जल्दी से देखिए एंड देन वी आर गोना डिस्कस अबाउट इट। जी हाँ, आप मुझे बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। और आज ही इसे ड्रॉप किया गया है, इसका टीजर और एक नॉर्मल ट्रेलर पहले ही ड्रॉप हो चुका था, लेकिन डिटेल्ड ट्रेलर, क्योंकि मूवी अब कुछ वक्त में लॉन्च होने वाली है, रिलीज होने वाली है, इसलिए लॉन्च किया गया है। अब एक और चीज है जो रामायण के इस पार्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है, एंड आई डोंट नो इफ यू विल फाइंड दैट इंटरेस्टिंग और नॉट, बट ये चीज है कि ये मूवी दो पार्ट में रिलीज होने वाली है। जी हाँ, इन्होंने देख लिया है कि धुरंधर जैसी मूवी ने कितनी कमाई कर ली, और ऐसे में अगर मूवी नहीं भी चलती है तो दो पार्ट्स में रिलीज करने से मूवी के चलने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, कॉस्ट को फिर से वापस लाने का जो है वो पूरी तरह इंतजाम हो जाएगा। सो रामायण भी दो पार्ट्स में रिलीज होने वाली है, दोनों पार्ट्स एक साथ शूट कर लिए गए हैं जस्ट लाइक धुरंधर। अब कैसे कौन सा पार्ट कब रिलीज होगा, वी आर गोना टॉक अबाउट इट, पर पहले आप ट्रेलर देखिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, बिकॉज आई रियली रियली वांट टू नो।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्चनीबा के साथ। तो दोस्तों, आई होप आपने रामायण का ट्रेलर देख लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था वी आर गना डिस्कस अबाउट इट। आज इसका डिटेल्ड ट्रेलर आ गया है, लेकिन आपने एक चीज देखी, क्योंकि ये मूवी दो पार्ट्स में आ रही है, इसलिए आपको हनुमान जी की झलक भी नहीं दिखी है इस ट्रेलर में। लेकिन आई हैव टू से राणा दुग्गुबती इज लिटरली ओनिंग हिज कैरेक्टर। मतलब वो जब बोल रहे हैं ना, तो सच में ऐसा लग रहा है कि रावण बोल रहा है यार, रावण बोल रहा है। जी हाँ, तीनों लोकों का स्वामी रावण बोल रहा है, और कैसे वो तीनों लोकों का स्वामी बना उस जर्नी को भी इस पार्ट में दिखाया गया है। वेल ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं जो इसको खास बनाती हैं। मैं जितना देख पाई उसमें मुझे VFX जो है वो काफी अच्छे लगे, मतलब काफी अच्छे लगे। अभी तक की जितनी भी बॉलीवुड मूवीज हमने देखी हैं उस हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं, और हमें अच्छे VFX की जरूरत भी थी। जी हाँ, इसमें जो दशरथ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो आपको पता ही है कौन है। जी हाँ, सो ऑफ कोर्स वो जो पहले राम जी का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं वही दशरथ का रोल प्ले कर रहे हैं। लारा दत्ता जो है इसमें केकई का रोल प्ले कर रही है, और साथ में रकुल प्रीत जो है इसमें शुभ नखा का रोल प्ले कर रही है। सब अपने कैरेक्टर में जो है वो बहुत ही अच्छे रचे बसे हुए नजर आ रहे हैं, बट एक ही चीज अगेन मैं कहना चाहूंगी वो लैक कर रही है, एंड दैट इज वो जो सौम्यता, जो शांति, जो बहुत सौम्य जो है वो उनकी आंखें नजर आती हैं भगवान राम की, वो मुझे अभी भी बॉदर कर रही है। रणबीर कपूर वॉज नॉट द राइट चॉइस फॉर राम। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि इस मूवी में हर एक बंदा, लक्ष्मण के कैरेक्टर में रवि दुबे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, VFX भी बहुत अच्छे हैं। राइटिंग वाइज जितना मैंने सुना मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी मूवी देख के पता चलेगा। बट या अभी तक हनुमान जी की आपको झलक भी नहीं दिखी है इसमें, तो मतलब वो सेकंड पार्ट के लिए इन्होंने रखी है। सो पहला पार्ट रिलीज होने वाला है, और सेकंड कब होगा विल सी टू दैट। या यू टेल मी अबाउट योर थॉट्स बिकॉज आई रियली वांट टू नो दैट। एंड यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

हाँ, एप्पल ने भी एक नई अपडेट जारी की है, तो जरा आप बात कर लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि काफी सारे लोग एप्पल यूजर्स हैं, फिर चाहे वो एप्पल फोन हो, आईपैड हो या मैकबुक हो. सो अगर आपको नहीं पता है, जून में एप्पल ने अपने आईपैड और मैकबुक के प्राइजेस को बढ़ा दिया था, और ऑफकोर्स ये वो अपने फोनों के साथ भी करने वाले हैं ऐसा कहा जा रहा था. लेकिन एप्पल ने दो नई चीजें की हैं. सबसे पहले तो उन्होंने पार्टनर किया है क्लाना के साथ, मतलब आप अपना फोन जो है आज खरीदो, आप बाद में पे कर सकते हो. और दूसरी चीज है एप्पल अपग्रेड. जी हाँ, क्योंकि उनको पता है अब धीरे धीरे चीजें महंगी हो रही हैं, क्योंकि रैम और डाटा चिप्स जो हैं उनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, और ज्यादा पैसे लगेंगे तो चीजों को महंगा करना पड़ेगा, और अगर चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे. अब ऐसे में एप्पल कितना भी अच्छा हो, अगर वो इतना ज्यादा महंगा हो गया कि लोगों को लगेगा इट्स नॉट वर्थ इट, सो दे आर नॉट गोना बाय इट. सो ऐसे में इन्होंने ये दो चीजें की हैं, जैसे मैंने कहा कि क्लारना के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने पार्टनरशिप की है, और दूसरी चीज उन्होंने की है एप्पल अपग्रेड, मतलब कि एप्पल को जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश की है. अब आपको अपना फोन खरीदने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, मतलब आपका फोन जो है आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, आप उसे लीज पे ले सकते हो. जी हाँ, ये एप्पल ने नया अपग्रेड किया. आप लोग बोलोगे व्हाट, लीज पे लेना है फोन? अच्छा चलो बताओ कैसे होगा. सो अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको $18 पे करने पड़ेंगे, अगर आप मैकबुक लेना चाहते हो लीज पे तो आपको $25 अ मंथ पे करने पड़ेंगे, और अगर आप आईपैड लेना चाहते हो लीज पे तो आपको पे करना पड़ेगा $12. जी हाँ, ऑफकोर्स लीज पे है तो आपके पास फोन है लेकिन फिर भी एप्पल ही उसको ओन कर रहा है. अब आप लोग बोलोगे कि अच्छा, पर फिर उसके बाद क्या होगा? वेल, उसमें तीन ऑप्शंस है. सबसे पहले तो आप जो है वो उसको रख सकते हो. दूसरी चीज, अगर आप उसको नहीं रखना चाहते हो, एक साल या दो साल बाद अपने फोन को अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको 17 के बजाय 18 मिल जाएगा, और आप उसे वैसे ही रख सकते हो, वैसे ही रेंट पे उसे ले सकते हो. तीसरी चीज, आप ज्यादा पैसे पे कर सकते हो और उसे खरीद सकते हो, ज्यादा सम पे करके अपने पास ही रख सकते हो. आप लोग बोलोगे कि ये क्या कर रहा है एप्पल? वेल, एप्पल यही कर रहा है. सो मैं बस आपको बताना चाहती थी कि नई चीज यही है कि एप्पल महंगा हो रहा है तो एप्पल खरीदने के बजाय लीज पे लिया जा सकता है. और अगर आपको लगता है कि इट इज गुड देन लेट मी नो, और अगर आपको लगता है कि क्या बकवास है ये, तो प्लीज तब भी हमें जरूर बताइएगा. इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di suchna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, अब मैं आगे की ओर जा रही हूँ और आपको तो पता ही, जिंदगी में आगे बढ़ने का नाम ही सही से जिंदगी जीने का नाम है। जी, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा, कभी कभी तुम्हारी पहेलियां ना हमारी समझ के बाहर हो जाती है। वेल, कभी कभी मेरी पहेलियां मेरी भी समझ के बाहर हो जाती है, सो डोंट वरी। अब यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट जो है यहाँ पर शुरू होने वाला है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मतलब पुराने गाने, पुरानी बातें, किस्से, वो तराने और सब कुछ खूबसूरत जो है वो होने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम एक बेहद ही प्यारे गाने के साथ। जी हाँ, और ये प्यारा गाना जो है ये फरमाइश किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये फरमाइशी गीत है और फरमाइश कुछ ऐसे आई है, मतलब पूरी तरह से फरमाइश नहीं आई है, लेकिन फरमाइश में ये कहा गया है कि सुरिंदर कौर जी का कोई गाना प्ले कर दिया जाए। जी हाँ, और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास लिस्नर, जिन्होंने हमें कुछ वक्त से सुनना शुरू किया है। और मुझे पता है कि जब भी मेरे कोई लिस्नर जो हमें नया नया सुनना शुरू करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि फिर उनको इस चीज की आदत लगानी है मुझे। जी हाँ, मतलब हमारा प्रोग्राम वो सुनते रहे, ये मेक श्योर करना है हमें। तो ऑफकोर्स हम तो फरमाइशें प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, और जो गाना मैं खूबसूरत सा प्ले करने वाली हूँ वो है काले रंग दा परांदा। जी हाँ, और ये सुरिंदर कौर जी ने गाया है। ये फरमाइश हमारी बहुत ही खास लिसनर परमजीत जी की तरफ से आई है, और थैंक यू सो मच परमजीत जी, हमेशा मतलब ये प्यारी प्यारी फरमाइशें करने के लिए। और ये प्यारे प्यारे पंजाबी गाने, खासकर ये जो फोक सॉन्ग्स आप करते हो फरमाइश, ये बहुत अच्छे लगते हैं हमें। एंड सुरिंदर कौर जी, क्या बात करूं मैं इनके बारे में, शी इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट। मतलब क्या क्या गाने गाए उन्होंने, आज भी उनके गाने जो है वो वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे थोड़े नए ट्विस्ट के साथ। सो यू कैन इमेजिन व्हाट वाज शी। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच परमजीत जी इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए। ये प्ले करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, और आप भी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये गाना जो है वो है काले रंग दा परांदा आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा खास हुई है। मतलब सुरेंद्र का कौर जो है वो लेजेंड है। सुरेंद्र कौर के गाने आज भी फेमस हो रहे हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट और रिमिक्स और उनके गाने, मतलब आप कहीं भी प्ले कर सकते हो। इनके गानों के बिना शादियां कंप्लीट नहीं होती हैं, खासकर पंजाबी वेडिंग्स और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स। सो यू कैन ओनली इमेजिन कि क्या लेजेंड रही हैं ये। जी हाँ, आज भी इनके गाने हमें एंटरटेन कर रहे हैं। सो ये खूबसूरत सी फरमाइश, बहुत ही मजा आया। अब इसके साथ आगे की ओर बढ़ने का वक्त आ गया है और एक और फरमाइशी गीत ही मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, जो कि है माला सिन्हा का। इस गाने की फरमाइश की गई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर प्रेमा आंटी जी की तरफ से। गाने का नाम है जारे उड़ जारे पंछी। जारे उड़ जारे पंछी, क्या बात है भाई। पंछियों के उड़ना तो जरूरी है, पंछियों का उड़ना तो जरूरी है, लेकिन हाँ, मतलब हमारे फ्लाइट्स जो हैं अगर उनको अनुमति देंगी तो ही। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 23 जुलाई जो है वो सबसे ज्यादा बिजीएस्ट एयर ट्रैवल डे था। अब 1.5 लाख से ज्यादा, मतलब इससे 1.5 लाख से कहीं ज्यादा फ्लाइट्स जो है वो आसमान पे थी पूरे वर्ल्ड में। आप खुद सोचिए, अगर इतनी फ्लाइट्स थी तो पंछी कहाँ उड़ रहे थे। सो या जा रहे उड़ जा रहे पंछी तो हम तभी कह पाएंगे जब फ्लाइट्स मौका देंगी पंछियों के उड़ने का। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये खूबसूरत सा गाना सुनाते सुनाते, क्योंकि माला सिन्हा और देवानंद साहब का ये गाना है। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमेशा बहुत ही जबरदस्त फरमाइशें करने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे इस प्रोग्राम को, बहुत ही अच्छा लगता है हमें। बट माला सिन्हा धर्मेंद्र के साथ काफी काम किया है उन्होंने, और उन्होंने धर्मेंद्र के साथ तब काम किया है जब धर्मेंद्र उतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन माला सिन्हा बहुत बड़ी स्टार थी। जी हाँ, अब वो बताती हैं कि जब वो शूट पे जाती थी उन्हें ऐसा लगता था कि कितना शर्मीला इंसान है, पर बड़ा ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा इंसान है। तो वो कहती हैं कि मैं ना छेड़ा करती थी धर्मेंद्र को, और जब भी मैं उन्हें छेड़ती थी तो वो एकदम शर्मा जाया करते थे, क्योंकि वो नए नए थे फिल्म इंडस्ट्री में। और वो चीज मुझे आज भी याद है, वो बहुत ही जबरदस्त एक्टर तो थे ही, लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान भी थे, और आपको बहुत सेफ फील होता था उनके साथ काम करते हुए। चलिए, माला सिन्हा जी का ये गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, और ऐसे ही फरमाइशों का सिलसिला जारी रखिए। ये भी कहूंगी

जी हाँ दोस्तों, कभी आप सोच सकते हो कि किसी गाने को ठुकराया हो किशोर दा ने ये कहकर कि ये गाना बहुत ही ज्यादा देसी है, मतलब बहुत ही ज्यादा देसी है और मैं इसे गा नहीं पाऊंगा। आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो नहीं लगता हमें, क्योंकि किशोर दा क्या नहीं गा सकते थे। वेल, यही तो बात थी, यही तो बात थी। किशोर दा बहुत ही अच्छे गायक थे, लेकिन क्लासिकल गानों की जब भी बात होती थी तो वो थोड़े ढीले पड़ जाते थे। ऑल्दो वो ट्राई पूरा करते थे, बट उसके पीछे रीजन ये था कि वो क्लासिकली ट्रेंड थे ही नहीं। जी हाँ, मतलब वो क्लासिकल ट्रेंड जो सिंगर्स होते हैं जिन्होंने बचपन से गाना सीखा होता है, वैसा तो किशोर दा के साथ था ही नहीं। किशोर दा तो अपनी मेहनत के साथ साथ अपने टैलेंट की वजह से गाते थे। जी हाँ, यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि SD बर्मन एक बहुत ही सैड धुन जो है वो तैयार करते हैं, और वो सैड धुन सुनकर वो सोचते हैं कि इसे तो किशोर दा के साथ ही जो है मैं गाना जो है वो गवाऊंगा। अब गाना वो किशोर दा से गवाना चाहते थे, लेकिन किशोर दा सुनते हैं और वो कहते हैं कि नहीं दादा, ये तो ना बहुत ही ज्यादा देसी है और मैं इसे गा नहीं पाऊंगा। फिर निर्देशक आते हैं, बुम्बई का बाबू के जो निर्देशक होते हैं वो आते हैं और वो इस धुन को सुनते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये मेरी पिक्चर में चाहिए, अब आप इंतजाम कीजिए कि आप गवाना किससे चाहते हैं। किशोर दा ने मना कर दिया। फिर उन्हें लगा कि अगर किशोर दा नहीं गा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुकेश से ट्राई करवाना चाहिए, और मुकेश ने वो गाना गाया भी। जी हाँ, और क्या खूब गाया। और ये गाना जो है वो लिटरली उनके लिए एक बेंचमार्क साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है वो उनकी गायकी का लेवल लोगों ने पहचानना शुरू किया। मतलब एक ऐसा गाना जो कि किशोर दा ने ठुकराया लेकिन मुकेश की झोली आया, और फिर उनकी झोली में और भी बहुत सारे गाने आए। या ऐसा भी होता था। एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और फिर हम करेंगे और भी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो रहा है। लेकिन विदा लेने से पहले यहाँ पर हम बर्थडे विश करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त सिंगर को, जो कि हमारे इस जनरेशन के हैं, और हमें अच्छा फील होता है और बहुत प्राउड फील होता है कि उस एरा में रफी साहब थे, किशोर दा थे, मुकेश थे, लता जी थी, और वो सब थे। लेकिन हमारी इस एरा में भी सोनू निगम है, क्योंकि वो इतना मीठा गाते, इतना खूबसूरत गाते, क्या इंसान है और क्या वॉइस है। जी हाँ, सो ऑफकोर्स इस वाले सेगमेंट में उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने का मकसद यही है कि मैं चाहती हूँ कि उनका ही गाया हुआ कोई पुराना गाना आप सुने, मतलब पुराने गानों का कोई वर्जन जो उन्होंने गाया है वो आप सुने। जी हाँ, तो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सोनू जी आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से, और हम इतना ही कहेंगे कि ये साल आपके लिए जबरदस्त रहे, खुशनुमा रहे, हेल्थ वेल्थ सब कुछ एकदम बनी रहे आपकी लाइफ में, और आप इस साल हमें और भी खूबसूरत खूबसूरत गाने जो हैं वो दें, ताकि हम उनको सच में सुन सके, बिकॉज अच्छे गाने आजकल नहीं मिलते हैं। सो प्लीज आप ये करते रहिए, बिकॉज आपके करने से हमें अच्छा फील होता है। दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए सोनू निगम की आवाज में, कौन है जो सपनों में आया। जी हाँ, सुनते हैं इसको, एंड मिलते हैं आपसे कल। बाय, सी यू, टाटा।

सर को मैं चाहता हूँ।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए।
1: ऐ दोस्त, ऐ दोस्त,

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन क्लॉक लॉन्च। ब्रिस्बेन के क्वीन स्ट्रीट मॉल में 2032 ओलंपिक खेलों का 6 साल का ऑफिशियल काउंटडाउन क्लॉक शुरू कर दिया गया है। लॉन्च इवेंट के दौरान मेयर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शहर के लोकप्रिय इबिस पक्षी को भी ओलंपिक का शुभंकर बनाया जा सकता है। वहीं ब्रिस्बेन का फैशन ब्रांड ब्लैक मिल्क का बड़ा फैसला। जी हां, ब्रिस्बेन का मशहूर क्लॉदिंग ब्रांड ब्लैक मिल्क अब अपनी स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बंद कर रहा है। बढ़ते खर्चों के कारण कंपनी अब अपने कपड़ों का उत्पादन विदेश में करेगी। हालांकि इसके डिजाइन का काम ब्रिस्बेन स्टूडियो से ही चलेगा। वहीं मॉर्टन आइलैंड पर बर्ड फ्लू का संदिग्ध मामला। ब्रिस्बेन के पास मॉर्टन आइलैंड पर एक मृत समुद्री पक्षी में H5 बर्ड फ्लू की पुष्टि का संदिग्ध मामला सामने आया है। हालांकि क्वींसलैंड स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्मर्स सुरक्षित हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। वहीं ग्रेट बैरियर रीफ पर यूनेस्को की रिपोर्ट। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में सूची में डालने से रोक दिया है। हालांकि उन्होंने क्वींसलैंड सरकार के को जंगलों की कटाई रोकने और पानी की गुणवत्ता सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं पीक डाउन्स माइन में दुखद हादसा। क्वींसलैंड की पीक डाउन्स माइन में आज सुबह वाहन दुर्घटना में एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। माइनिंग कंपनी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ओरिजिन एनर्जी ग्राहकों के लिए डेटा अलर्ट। क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े ऊर्जा प्रदाता ओरिजिन एनर्जी ने अपने ग्राहकों को सचेत किया है कि एक साइबर हमले के दौरान कुछ बैंक डाटा प्रभावित हुआ है। कंपनी ने ग्राहकों को पासवर्ड बदलने और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर बड़ी बातचीत। नीट और एग्जाम लीक मुद्दे को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में आज बड़ा अपडेट आया है। सरकार और छात्र नेताओं के बीच आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक अहम बैठक बुलाई गई है। वहीं अमेरिका का भारतीय सामानों पर नया टैरिफ। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 10% का नया आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने ट्रेड नियमों का हवाला दिया है। हालांकि भारत सरकार इस मुद्दे पर अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। वहीं DRDO की मिसाइल कुशा का सफल टेस्ट। भारत की रक्षा प्रणाली को आज एक बड़ी ताकत मिली है। रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने अपनी नई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ऐसे के साथ गंगा किनारे से अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि पटना में गंगा नदी के किनारों पर बने सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 6 हफ्ते के भीतर पूरी तरह साफ किया जा सके। वहीं शिक्षकों के लिए दिल्ली चुनाव आयोग की राहत। दिल्ली चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची और चुनावी सर्वेक्षण से जुड़े सरकारी कामों का असर सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ा। मिडल ईस्ट के समुद्री व्यापारिक रास्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य और समुद्री निगरानी ठिकानों पर लगातार 13वें दिन हवाई हमले किए हैं। वहीं शी जिनपिंग करेंगे अमेरिका का दौरा। वॉशिंगटन से बड़ी खबर है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 दिसंबर को अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके साथ विमानन संस्था की पहली महिला प्रमुख बनी सादिया जहीदी। जी, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था में इतिहास रच दिया है। सादिया जहीदी को इस वैश्विक उड्डयन संस्था की पहली महिला प्रमुख चुना गया है। वहीं स्पेन में जंगलों की आग बुझाने का अनोखा तरीका। स्पेन में जंगलों की आग रोकने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया है। वहां प्रशासन गधों की मदद से जंगलों की सूखी घास चरवा रहा है ताकि गर्मी के दिनों में झाड़ियों में अचानक लगने वाली आग को फैलने से रोका जा सके। इसी के साथ सलमान रुश्दी ने कोर्ट में दर्ज करवाई गवाही। मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने साल 2022 में न्यूयॉर्क में अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में चल रहे ट्रायल के दौरान अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अपनी गवाही दर्ज करवाई है। इसी के साथ नेपाली सीमा पर 5 संदिग्ध गिरफ्तार। नेपाल से भारत की सीमा में बिना कागजात अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहे 5 लोगों को सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में एक अमेरिकी नागरिक और एक संदिग्ध अलगाववादी कार्यकर्ता शामिल है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार आगाज। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में रंगारंग उद्घाटन समारोह के दौरान 23वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों की शुरुआत हो गई है। वहीं भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। हरारे में खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। वहीं विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष। भारत के पूर्व विश्व चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की एक्शन से भरपूर शुरुआत। ग्लासगो में आज भारत के पैरा पावर लिफ्टिंग जिम्नास्टिक और स्विमिंग के खिलाड़ी एक्शन में हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में आज भारत के पास पदक जीतने के कई मौके रहेंगे। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +9।

9184838131360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Ramo?
1: Na badla mein, na badla.

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Sir, on stage, 5 minutes.
3: Okay. Tumhari, main ja. लगता है रूम में रह गया।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी वंसन ओवर एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए। देखो बॉलीवुड विच ना अक्सर कहा जाता है कि फिल्मा दो तरह नाल इतिहास बनाउंदियां ने। एक रिलीज़ तो पहला हफ्ते विच करोड़ रुपए कमांदियां ने ते रिकॉर्ड बुक विच दर्ज हो जांदियां ने ते दूसरा वो जो थिएटर विच भावे ही वधिया परफॉर्मेंस ना करन पर दर्शकां दे ज़हन विच सालां तक जिंदा रहिंदियां ने। ते ऋषि कपूर एक अजिहे एक्टर ने जिन्हां ने पांच दहाकियां तक फिल्म इंडस्ट्री ते राज कीता। ब्लॉकबस्टर बॉबी तो दे लीड रोल दे तौर विच शुरुआत करन वाले ऋषि कपूर ने अपने पूरे करियर विच सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फिल्मा दे पिछे नहीं भजे। यही वजह है कि उन्हों का फिल्म ग्राफ विच कई बेहतरीन कहानियां शामिल हैं जो रिलीज दे समय का बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हो गई हैं पर आज जो फिल्म हर सिनेमा लवर दी बकेट लिस्ट विच जरूर ने। दस दी उन्हें बेस्ट बेस्ट वाली फिल्मों के बारे में पर पहला सुनो एक गीत।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है, और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

जी अनुज जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसानी 101 एम जी आर जी संदेश अलग दिनास बने हुए। अगला नाम है जी राही बदल गए थे। फिल्म रिलीज हुई सी 1985 दे विच। रवि टंडन दे डायरेक्शन विच बनी राही बदल गए ऋषि कपूर दे करियर दा एक होर छिपिया होया हीरा है जिसनु रिलीज होण ते पहचान नहीं मिली जिसदे बाद विच ओ हकदार सी उदो। इस फिल्म विच ऋषि कपूर ने शबाना आजमी और पद्मिनी कोल्हापुरी वर्गे जानिया मानिया एक्ट्रेसिस दे नाल डबल रोल किया है। फिल्म की कहानी गलत फहमिया प्यार और परिवारिक भावनावां विच फसे किरदारा दे इर्द गिर्द खूबसूरती नाल बुनी हुई है। आरजी बर्मन का म्यूजिक इसकी सब तो वड्डी यूएसपी सी। 1980 दे दहाके दे विचकार जद स्क्रीन ते एक्शन ते बेरहम विलन आम गल सी इस शांत ते प्यारी लव स्टोरी नू थिएटर ते आम दर्शकां ने नकार दिता ते फिल्म बॉक्स ऑफिस ते पिछे रह गई। हालांकि अज दे समय विच जद लोग सिर्फ परिवारिक थीम ते मधुर म्यूजिक वालियां फिल्मां लभदे हैगे ने तां यूट्यूब ते ओटीटी प्लेटफॉर्म ते फिल्म दे व्यूज ते तारीफ साबित करदी है कि इसने दर्शकां दे नाल गहराई नाल जुड़ा महसूस किया है।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ,

4838131360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे, सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे। जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान।

हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: बाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं, साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला में ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

जीवन बहुत खूबसूरत है। ये किसी धर्म, सीमा, जाति, उम्र या फिर देश में नहीं बटा है। जीवन तो जीवन है, जिसे जीने के लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, अपनेपन के साथ हम जीवन जिए। हमें से कोई भी ये तो नहीं चाहता ना कि हमारी जिंदगी में लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, उत्पात हो या फिर आर्ग्यूमेंट्स हों। नहीं ना, हम सब खुशी खुशी रहना ही तो चाहते हैं। तो फिर हमारी जिंदगी में ये आर्ग्यूमेंट्स, ये लड़ाइयाँ, ये सब आता कहाँ से है? आइए आज मिलकर इसी पर विचार करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आज एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में जुड़ेंगे हमारी बातों के साथ। लेकिन इसे एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवाणी।

1701 एम पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जीवन के आधार को आज एक बार फिर से हम साथ समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबके जीवन में सारा खेल विचारों का है। आपके थॉट्स जो हैं वो या तो आपको बना देते हैं या आपको बिगाड़ देते हैं। भगवान बुद्ध ने भी स्वयं यही तो कहा है कि जीवन में सारा खेल विचारों का है। आप चाहें तो अपने विचारों से अपनी किस्मत तक को बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। और यही विचार आप कोई अच्छे खासे करियर को खराब करके आपको मिटाने का भी काम करते हैं। तो खुद पर भरोसा रखिए और हमेशा अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग रखिए। इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी।

रेडियो पिसवानी पर जिंदगी के नाजो नखरों से दूर खुद को, खुद की सच्चाई को और इस सृष्टि को जानने का सफर है जीवन आधार। इसी सफर में आज एक बार फिर से आप हैं सताक्षी के साथ। आइए जीवन आधार में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं अभी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो पिसवानी।

अक्सर हम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, हम यही सोचते हैं ना। लेकिन आप दूसरों की दृष्टि में क्या हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, आपको क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं है, ये जीवन में महत्वपूर्ण है ही नहीं। जीवन में महत्वपूर्ण तो ये बात है कि आप अपनी दृष्टि में क्या हैं, आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आप खुद को कितना अच्छे से जानते हैं और आप खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो खुद को पहचानिए, दूसरों से अपनी पहचान की उम्मीद रखना बंद कीजिए। और आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर जीवन आधार।

खुद को जानने का और उस परम शक्ति से मिलने का जो इस सृष्टि का पालनहार है। ये सफर है जिसका नाम है जीवन आधार। जीवन आधार पर आज हम एक बार फिर से जिंदगी को, जीवन को इस सुबह समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सफर के साथ आगे बढ़ते हुए एक और गीत यहाँ पर सुनेंगे। सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन आधार।

कहते हैं कि आप जो विचार रखते हैं ना दोस्तों, वही आपके शब्द बनते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं ना वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं वही तो हम बन जाते हैं। बात नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि अपने थॉट प्रोसेस पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। अपने सोचे हुए को ही तो आप अंजाम देते हैं। अब देखिए ना, एक इंसान पूजा के पहले भी सोचता है और मर्डर करने के पहले भी सोचता है। कहने का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही तो आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं फिर बोलते हैं, वही आपके एक्शंस होते हैं, वही काम आप करते हैं, यानी कि वही आपके कर्म बन जाते हैं, और जो कर्म आप करते हैं वो कर्म ही आपको बनाते हैं। इसलिए सबसे पहली शुरुआत अपनी सोच से कीजिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, जीवन अच्छा होता जाएगा। आइए एक और गाने के साथ बढ़ते हैं इसी जीवन के सफर में आगे, जीवन आधार में।

श्रोताओं, जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर। ये सफर जो है ये अपनों के साथ के साथ साथ उनका साथ निभाने का भी है जो हमारी जिंदगी में कोई नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन हम उनके भी हित को, उनके भी खुशियों को ध्यान में रखें और कर्म करें, यानी हम इंसान बने, इसी बात को ध्यान में रखने का सफर है जीवन आधार। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

मन, कहते हैं मन बड़ा ही चंचल होता है दोस्तों, लेकिन ये मन बहुत जल्दी अपनी शांति भी छोड़ देता है। यानी किसी के बिहेवियर पर कई बार हमारा मन डिपेंड हो जाता है। लोगों का बिहेवियर अगर अच्छा रहा तो हमारा मन भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है, खुश रहता है। लेकिन अगर लोगों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हुआ तो हमारा मन भी चेंज हो जाता है, विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के व्यवहार का असर आपके मन की शांति पर ना पड़े, वो जितना शांत है उतना ही रहे, विचलित ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात पर एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था एक और जीवन आधार का सफर रेडियो प्रसवानी 107.0 AM पर। जीवन आधार की एक और कड़ी के साथ कल सुबह होगी आपसे फिर से रेडियो प्रसवानी पर मुलाकात। आज के सफर से आप सताक्षी इजाजत चाहेगी। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जाने जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। एंड उम्मीद है जी आपकी सुबह प्यार पॉजिटिविटी और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू हुई होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की फ्रेश अपडेट के साथ कुछ बातें, और उससे पहले आपको सुनाएंगी कुछ प्यारा सा गीत, ताकि उस गीत को सुनकर आप सभी एनर्जी से भर जाएं और आप सभी तरोताजा होकर न्यू अपडेट्स जरूर सुने जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। टिल देन सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बानी में। तो दोस्तों आज ब्रिस्बेन में सुबह का जो मौसम है ठंडा और सुहाना रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आज दोस्तों लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और कम की बात करें तो मिनिमम 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। दिन भर हल्की धूप और हल्का ठंडा मौसम बना रहेगा। तो आइए फिर इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्बानी में। तो दोस्तों लगता है ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। जी हाँ, आज से ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक गेम्स में सिर्फ और सिर्फ 6 साल बाकी रह गए हैं और इस मौके पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और ओलंपिक जो वेन्यूज है उसकी तैयारियों को लेकर काम जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ओरिजिन एनर्जी ने कंफर्म किया है कि साइबर अटैक के बाद कुछ कस्टमर्स का डाटा जो है वो एक्सेस हुआ था और कंपनी अफेक्टेड कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर रही है और सिक्योरिटी मेजर्स और मजबूत किए जा रहे हैं। तो आप सभी भी अलर्ट जरूर रहिएगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इस ट्रैक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन के क्यू पैक में इस साल जो है नवंबर से शुरू होने वाला है द लॉयन किंग म्यूजिकल टिकट सेल्स के मामले में पहले ही रिकॉर्ड जो है वो तोड़ चुका है। अब पब्लिक में इस शो को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज शाम जो है ब्रिस्बेन के प्रिंसेस थिएटर में ब्लैक डे आउट म्यूजिक इवेंट होगा, जहां पर फर्स्ट नेशंस आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीतने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, वैसे दोस्तों क्या आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर भेड़ों यानी कि शीप की संख्या जो है लोगों से भी ज्यादा है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में। इसी के साथ दोस्तों आइए एक विचार की बात करते हैं। खुद पर भरोसा रखना ही हर सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक आप खुद पर यकीन रखते हैं तब तक कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है एक खूबसूरत से गाने का और गाने के बाद लौटेंगे और लेकर आएंगे और भी फ्रेश ऑस्ट्रेलिया अपडेट्स, एंटरटेनमेंट और मॉर्निंग मस्ती सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्बेन पर।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आइए फिर इसी के साथ इंडिया न्यूज में कुछ नजर डालते हैं। इसरो जो है वो अपने अगले स्पेस मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं पर मॉनसून के चलते कई राज्यों में बारिश जारी है। लोगों को ट्रैवल के दौरान जो है सावधानियां रखने की सलाह भी दी गई है। वहीं पर अगर हम एंटरटेनमेंट दुनिया की बात करें तो दोस्तों बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स के अपकमिंग मूवीज की रिलीज डेट्स जो है वो अनाउंस हो चुकी है। वहीं पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नए थ्रिलर और कॉमेडी शोज जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें नए सिंगल्स को भी फैंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दोस्तों वीकेंड प्लेलिस्ट में रेट्रो बॉलीवुड सॉन्ग्स दोबारा ट्रेंड कर रहे हैं और आप सभी उन सॉन्ग्स को जरूर सुने। तो आइए फिर इसके साथ बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

इसी के साथ दोस्तों अगर हम वर्ल्ड की अपडेट जाने तो दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर और एजुकेशन में और ज्यादा यूज हो रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की बात करें तो दोस्तों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है वो ट्री प्लांटेशन और रिसाइकलिंग पर काफी जोर दे रहे हैं। वेरी वेरी वेरी गुड न्यूज। इसी के साथ दोस्तों अगर हम स्पोर्ट्स में नजर डालें तो क्रिकेट और फुटबॉल के इंटरनेशनल मैचेस को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट बनी हुई है। ऑस्ट्रेलियन एथलीट्स कई इंटरनेशनल कंपटीशन में शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं पे दोस्तों हॉलीवुड के कई जो स्टूडियोज हैं उन्होंने 2027 के लिए अपनी बिग बजट फिल्म्स की शूटिंग भी शुरू कर दी है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो प्रेस 101।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिसवानी में। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना है ये प्यारे प्यारे गीत और आप सभी ने आज जाना है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, इंडिया, वर्ल्ड, सभी चीजों की अपडेट्स आप सभी को सुनाया है आपके दोस्त आरजे चांदनी जैन ने। और इसी के साथ दोस्तों, वक्त हो चुका है आप सभी को टाटा बाय बाय कहने का। लेकिन उससे पहले दोस्तों, याद रखना, जिंदगी में ना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखिए। क्योंकि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी वेस्ट नहीं जाता अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया हो। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का मॉर्निंग शो यहीं पर समाप्त होता है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे चांदनी जैन। मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल जरूर रखिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिसवानी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत एंड हैव अ वंडरफुल फ्राइडे। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। श्रीलंका में डेंगू से 56 लोगों की मौत, जुलाई में 20,000 नए मामले। श्रीलंका पिछले करीब 10 सालों में डेंगू के सबसे बुरे प्रकोप का सामना कर रहा है। ये बीमारी इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है कि सरकार को इससे निपटने के लिए ड्रोन तैनात करने पड़े हैं। मिलिट्री ड्रोन की मदद से छतों और मच्छरों के पनपने वाली जगहों का पता लगाया जा रहा है और जगह जगह जमा पानी का पता लगाकर डेंगू फैलने से रोका जा रहा है। हिटलर के जन्म स्थान में खुला पुलिस स्टेशन। ऑस्ट्रिया ने जर्मन तानाशाह की भयानक विरासत को दी नई पहचान। ऑस्ट्रिया के ब्रैनो एम इन शहर में उस घर में एक पुलिस स्टेशन खोला गया है जहां जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। ये 17वीं सदी के पुराने सराय के बारे में सालों से चल रहे विवाद के बाद हुआ है। इसी घर में अप्रैल 1889 में नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। सिक्किम टनल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 25, सभी शव बाहर निकाले गए। NHPC तीस्ता स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों की तलाश के लिए राहत एवं बचाव अभियान देर रात तक जारी रहा। बचाव दलों ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अभियान को जारी रखा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के समर्थन में पोस्ट हटाए। IIT मद्रास ने छात्रों से इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर किया आगाह। नीट पेपर लीक मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहां इन छात्रों का नारा लगाकर बैनर पर अपनी बात लिखकर या फिर छोटे वीडियो बनाकर समर्थन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने छात्रों से कहा है कि वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियोस को हटा दें। IIT मद्रास के एक छात्र ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, यूनिवर्सिटी ने हमसे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में डाले गए इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने के लिए कहा है। तबियत बिगड़ने पर जंतर मंतर से हटे अभिजीत दीप के। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके की तबियत अचानक बिगड़ गई है। तेज बुखार और शरीर में दर्द के कारण उन्हें मजबूरी में प्रदर्शन स्थल से हटना पड़ा। इसकी जानकारी दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। आइए जुड़ते हैं अब खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 भारतीय खिलाड़ी 6 खेलों में उतरेंगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस इवेंट में 74 देशों के 3,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 10 खेलों में 215 गोल्ड सहित कुल 1,168 मेडल दाव पर होंगे। भारत के 125 खिलाड़ी 8 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जी, सूरज ने दरवाजा खोला है और किरणों का आगाज किया है। आप हैं हमारे आवाज की दुनिया के दोस्त, सो इसलिए करते हैं आपको याद। कहती हूँ आपको नमस्कार, केम छो, सात श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मौसम बहुत ही सुहाना है, ठंड थोड़ी थोड़ी है मगर कोई बात नहीं। अभी लगभग 12 डिग्रीज है ना,

हाँ जी, अलग अलग इलाके में मौसम अलग अलग होता है, यानी कि कितना गर्मी कितना ठंड अलग अलग सबवेब्स में अलग होते हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, करती हूँ एक बार फिर आपका स्वागत और चलो प्रभु का नाम लेकर करते हैं शुरुआत आज के इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं सुबह का सफर। वेलकम टू रेडियो ब्रिजवानी। आज नीलम साथ नहीं है, सो मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ।

वाह, आई होप आपने इस गीत को एंजॉय किया. और चलो, क्या आपको पता है आज 31 जुलाई एवोकाडो डे है, वर्ल्ड एवोकाडो डे. इज़न दैट अमेजिंग. इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि क्या क्वालिटीज है इस छोटे से फल में. हाँ, ओके. चलो, अगला गीत आपके लिए.

हाँ जी, आज जुलाई महीने का आखिरी दिन है ना। सो आई होप आप अगस्त महीने में दाखिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि धीरे धीरे विंटर का जो ये मौसम है खत्म होने वाला है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सो देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लुक फोर्ड कर रहे होंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है एंड ऑफ कोर्स वीकेंड आने वाली है ना। सो 2 दिन की छुट्टी, हाँ हाँ सो 2 दिन की छुट्टी एंड रिलैक्स कर सकते हो आप। मगर देखिए, बहुत कुछ होता है एंड लोग एंजॉय करते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय ही करना चाहिए, सिचुएशन जो भी हो। कम ऑन, सिचुएशन जो भी हो, आज है कल खत्म होने को है, ठीक है। सो एन्जॉय योर सेल्फ एंड आई होप अभी तक तो लाइफ फर्स्ट क्लास ही है। हाँ, सो देखते हैं।

हाँ जी, आई होप इट्स फर्स्ट क्लास. ना हो तो फर्स्ट क्लास बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आज का दिन अगर निकल गया तो वो दोबारा आने वाला नहीं है, ठीक है? सो हैप्पी हैप्पी रहिए, एंड जो भी सिचुएशन है उससे डील करने की कोशिश कीजिए. हाँ जी, याद रखिए 15 तारीख अगस्त इंडिया इंडिपेंडेंस डे है, सो दैट्स वन थिंग. और हाँ, रामायण का जो जो मैंने कहा था कि उसका ट्रेलर है वो आउट हो चुकी है, अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं. फिर उधर रक्षाबंधन आने वाली है और सब कुछ कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, मगर अभी के लिए बस इतना ही. और बहुत ही सुहाना मौसम है आज ब्रिस्बेन में, एंड आई होप जब धूप निकलती है मुझे तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ. मुझे आई लाइक नाइस सनी डेज. और इस जो धूप की जो धूप निकलती है तो हम कहते हैं कि सूर्य जी हम पर मेहरबान हो चुके हैं, ठीक है? मुझे पता नहीं आपको क्या लगता है, मगर मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ. सो चलो आगे चलते हैं. हाँ जी, सो देखते हैं कि कौन से गीत अभी आपके लिए हम लेकर आए हैं. सो अभी तो लगता है कुछ ठीक नहीं है, मगर कोई बात नहीं, कभी कभी हो ही जाता है ना. चलो छैया छैया, ठीक है.

आज 31 जुलाई, जैसे हमने कहा, इस महीने का आखिरी दिन। एंड उम्मीद है कि आप शायद रास्ते पर होंगे, या काम की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर स्कूल की तैयारी में लगे हुए हो ना। आप जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स दुनिया के किसी भी कोने से आप हमारे साथ जुड़ गए हो, तो आपको तो खास तौर से हम स्वागत करते हैं, ठीक है? या आप रेडियो ब्रिजवानी का साथ दे रहे हो, दिस इज अमेजिंग। और हाँ जी, सो ये जो है रेडियो ब्रिजवानी 1701, आप इसे विदेश में भी सुन सकते हो। कम ऑन, डू लिसन। और बताइए, जो भी लोग जहाँ पर भी हो, आप अपने फैमिलीज को बताइए कि प्लीज़ साथ दीजिए, और हम इसी तरह आपको भी एंटरटेन करते ही रहेंगे। एंड हाँ जी, अगर आज एक बहुत ही खास दिन है, ठीक है? आज एक बहुत ही खास दिन है, अगर आपका जन्मदिन हो तो। देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस मुमताज़, आपको याद है, आज उनका भी जन्मदिन है, और आपका भी जन्मदिन होगा। शायद आप मुझे बताए नहीं, मगर मुझे पता है कि एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत बच्चा है, बहुत ही प्यारा है, आरुष पूरन का आज जन्मदिन है, ठीक है? और खास तौर से मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जो वर्ड, जो नाम है आरुष, आरुष का जो हिंदी अर्थ है, आपको पता है, ये बहुत ही स्पेशल है, और ये है सूर्य की पहली किरण, यानी सुबह की लाली। जैसे आज ये जो सुबह की पहर है, सुबह की किरण है, बहुत ही चमकदार होता है ये ना। सो ये एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय नाम है जो सूर्य के प्रकाश और नई शुरुआत से जुड़ा है। सो आरुष, मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी जो नाम जैसा आपका जीवन हो आगे, और आप बहुत ही खुशहाल बच्चा, बहुत ही होनहार बच्चा निकले, और बड़े होकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, ठीक है? और बहुत ही प्यारा सा नाम है, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये नाम, और उम्मीद है कि आप लोग भी इस नाम को पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा नाम है जो मैंने तो बहुत कम बच्चों के नाम सुने हैं, मगर होगा बहुत सारे बच्चों का नाम। सो आरुष, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड आई नो दैट आप बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए हुए वीकेंड में, एंड होपफुली तुम्हारे सभी फ्रेंड्स, जिन लोगों को आप इनवाइट करे हो, सभी आएंगे, आपका साथ देंगे, एंड आपका साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है? सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ये गीत खास तौर से आरुष आपके लिए, और जितने भी लोग आज बर्थडे मना रहे हैं, जहां पर भी आप बैठे हो, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू।

आरुष, आपकी जो आजा जी है, जितिश पूरन आजी है, एंजेला पूरन, सभी आपको कह रहे हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और जो दादाजी दादाजी है, और उधर फिर साथ में काका है, काकी है, सभी लोग आपको कहते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे। और पापा की ओर से कैसे भूल सकते हैं, पापा कहते हैं मेरे लाडले को हैप्पी हैप्पी बर्थडे।

आपके सभी फ्रेंड्स भी कहते हैं हैप्पी हैप्पी बर्थडे. रेडियो बिजवानी की ओर से, सभी अनाउंसर्स की ओर से बहुत ही प्यारा सा किस यहाँ से हम भेज रहे हैं आपको. ठीक है,

0: हाँ जी, सो आरुष, ये मेरे फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, एंड इसे गाया है सोनू निगम, याद रखना, ठीक है. सो ये छोटा सा बच्चा आरुष का खास तौर से जन्मदिन आज हम मना रहे थे, और जितने भी लिसनर्स हमारे हैं, जो अगर आज आपका जन्मदिन है और मुझे पता नहीं है, तो ये आपके लिए भी, ठीक है.
1: ना कर पाए तो मरने के बाद भी सोचता हूँ.

बहुत ही खुशनुमा माहौल है. एंड हाँ जी, जैसे हमने आपसे कहा कि आज अगर आपका जन्मदिन है तो आज एवोकाडो इंटरनेशनल डे भी है. तो एवोकाडो बहुत से लोग जानते हैं एवोकाडो है क्या, मगर कुछ लोगों को शायद ना पता हो. तो ये जो ये एक फ्रूट है, ठीक है ना, बाद में बताएंगे, मगर हर हर साल इसी दिन 31 जुलाई को वर्ल्ड एवोकाडो डे मनाया जाता है. और ये दिन एवोकाडो के स्वास्थ्य लाभों, उसकी खासियत और दुनिया भर में उसकी जो लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए ये होता है, ठीक है. सो दैट शोज हाउ स्पेशल एवोकाडो इज. हाँ, तो इसकी जो मुख्य पर्पस है ये है इस दिन मनाने का कि लोगों को एवोकाडो खाने के फायदों और इसे अपने खाने में शामिल करने के तरीकों के बारे में बताया जाए. हाँ, तो मैं अभी आपको बताती हूँ इसके फायदे क्या क्या है चंद शब्दों में. इसमें बहुत अच्छे फैट्स यानी हेल्थी फैट्स, ठीक है, हेल्थी फैट्स होते हैं, साथ में फाइबर भरमार होते हैं इसमें, और विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और ये जो दिल और सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो आप भी लाकर खाइए. अगर आपको आप कभी खाए नहीं है तो याद रखिए, सुपरमार्केट में जाइए, आपको मिल जाएंगे एवोकाडोस. या ये बहुत ही अच्छी फल है एंड फ्रूट है, वट एवर यू कॉल इट, इट्स वेरी गुड एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. सो आज है वर्ल्ड एवोकाडो डे. हाँ, तो चलो एक और गीत सुनते हैं. ऐसे धीरे धीरे हमारा समय बस निकलता ही जाएगा. हाँ,

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सुन रहे थे। ये एक्चुअली जोधा अकबर का गीत था। और अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी ओर, ठीक है, केदारनाथ की ओर लेकर चलते हैं आपको।

बातें प्यारा सा गीत। और हाँ जी, आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। कैसी है ये दुनिया, कैसी है ये रीत, क्या होता है जीवन में, किसको पता है ना। इतना होनहार जवान युवक हमारे बीच से निकल गए। एनीवे पुरुष, यू कैन से इट। तो चलो, कहते हैं हर दिन कुछ ना कुछ सिखाया जिंदगी ने, हर दिन कुछ ना कुछ सिखाया जिंदगी ने, कुछ इस तरह हमें आजमाया जिंदगी ने। एक ऐसी तमन्ना है जिंदगी, एक ऐसी तमन्ना है जिंदगी, जिसमें हमारे सामने होती है हर चीज, लेकिन हम उसे पा नहीं सकते। आपको पता है ये जो नगमा मैं बजाने जा रही हूँ, ये किसके फेवरेट है? ये आरुष का फेवरेट है। और आरुष इतना छोटा बच्चा है, उसे ऐसे गीत पसंद है। तो यही बताता है हमें कि जो म्यूजिक होती है, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। इतना सुंदर ढंग से हमारे भारतीय म्यूजिक, ये कितने पुराने गीत है, पुरानी गीत है, मगर फिर भी एक बच्चा इसे पसंद करता है। सो चलो, आरुष आपका फेवरेट सॉन्ग आपके।

हाँ जी, एक ऐसी आवाज जो ना भूलने वाली आवाज किसकी है? किशोरदा की. ठीक है, तो आरुष, आई होप यू एंजॉयड इट. एनीवे, अब हम लेकर आपको चलते हैं ये गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड. डिफरेंट मूड्स और डिफरेंट सेंटिमेंट्स होते हैं हमारे लिसनर्स के, बहुत सारे लिसनर्स होते हैं, तो अलग अलग गीत हम पेश करते हैं, मगर सभी के लिए कुछ ना कुछ पेश करते हैं. सो सदाबहार गाने यानी पुराने फिल्मी गीतों की ओर हम बढ़ रहे हैं. एंड जैसे हमने पहले कहा आपसे कि नहीं, मैंने नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी है आज. ठीक है, आज उनकी बरसी है एंड हम उन्हें भी याद करते हैं एंड यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जहाँ भी हो उसकी आत्मा को शांति दे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे. ठीक है, तो उन्हीं के आवाज़ में ये नगमा आपके लिए और जितने भी पुराने गीतों के आशिक हैं आप सभी को इसमें शामिल करते हैं.

0: सुबह से शाम तक
1: What I will dance? My dance shall speak for me.
0: शाम से रात्रि तक
1: Superb, superb, fabulous, outstanding.
2: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
3: हिल मत चल
2: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा ओके
3: सॉफ्ट लाउड
4: यस रेडियो ब्रिजवानी आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 71 पर मैं शशि जोखन आपका साथ दूंगी ठीक 9 बजे तक हाँ एंड आप भी हमारा साथ इसी तरह देती ही रहिए आप जहां भी हो जिस हाल में भी हो आपका स्वागत कर रही हूं और हाँ जी गायिका के सारे गुण ईश्वर किसी एक में भर देता है सातों सुर किसी एक तान में आ जाए तो समझो वो कौन है मोहम्मद रफी साहब है सो उन्हीं की आवाज में चलो एक और गीत हम पेश करते

0: नहीं पहनूं। पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: आज 8:06 हो चुके हैं और 9 बजे तक मैं दूंगी आपका साथ। और अभी तो हम मोहम्मद रफी साहब के कुछ गीत सुन रहे हैं एंड उनकी याद में, जबकि आज उनकी बरसी है। सो चलो सुनते हैं एक और गीत, तेरे घर के सामने का ये जो गीत है।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: हाँ जी, रेडियो ब्रिजवानी आप सुन रहे हैं और सुबह का सफर, मैं आज नीलम की जगह आपका साथ दे रही हूँ। मैं शशि जोखन पूरे 9 बजे तक आपके साथ रहूंगी। तो चलते हैं, एक और गीत सुन लेते हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। ईश्वर ने ऐसी आवाज दी है उन्हें, वो दी थी, जो आज तक हम उनके यहाँ ना रहने पर भी इतना एंजॉय कर रहे हैं उनके नगमों को। सो चलो ये नगमा आपके लिए पेश कर देती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आए। ओके, मालूम नहीं क्या हुआ, मगर कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, हो ही जाता है कभी कभी। चाइना टाउन, हाँ जी, 1962 की फिल्म चाइना टाउन, उस समय का ये नगमा है और आवाज मोहम्मद रफी साहब का।

0: Sending our Digicel top-up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top-up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top-up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aap को रजिस्टर होना है at www.clickexpresspic.com पर Digicel, we are better together.
1: हाँ जी, रेडियो ब्रिजवानी का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एंड चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको फिल्म तमाशा का ये नगमा सुनाती हूँ. अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: हाँ जी, देखिए, लोग कहते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी तरह ये बात कही है कि जिंदगी से सही समय पर सीख लेनी चाहिए, जिंदगी से सही समय पर सीख लेनी चाहिए, अन्यथा वही सीख जिंदगी हमें हमारे गलत समय पर सिखाती है। तो ये है जीवन की सीख। सो याद रखिए, जब समय बीत जाती है तो बहुत देर हो जाती है ना।

0: हाँ जी, शाहरुख खान की फिल्म रईस से आप ये नगमा सुन रहे थे। हाँ जी, देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया की जो एक स्पेशल प्रोग्राम आती है टीवी पर, उस प्रोग्राम में बाल कैंसर के बारे में बहुत बात हो रही है, खास तौर से ऑस्ट्रेलियन यूथ्स को लेकर। तो पहली बात तो यह है कि गलत खान पान और अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल कई गंभीर बीमारियां, हाँ जी कई गंभीर बीमारियां सामने आ रही हैं। और आपको तो पता ही है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि उनकी उनकी गलत खान पान वगैरह की वजह से और कम उम्र के ही लोगों को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। तो कम उम्र के ही लोगों को अपना शिकार बना रही है ये गंभीर बीमारियां। तो इन्हीं में से एक है कोलन कैंसर, जो अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा बल्कि युवाओं में भी तेजी से फैल रहा है। ये 1999 से लेकर 2020 के बीच 10 से लगभग 44 ईयर्स की उम्र के लोगों में इस कैंसर के मामलों में खास बढ़ती देखी गई है, यानी बढ़ोतरी देखी गई है। और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि इस कैंसर से पीड़ित हर 5 में से एक मरीज की उम्र 55 वर्ष से कम होती है। तो रिसर्च के मुताबिक इस कैंसर के पीछे कई कारण छुपे हुए हैं। एक तो बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल प्रमुख भूमिका निभाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसके बारे में चंद लफ्ज कह दूं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया में युवाओं, जो 20 से 30 की उम्र के लोगों में बाउल का कैंसर, ठीक है, बाउल का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार। तो युवा मरीजों के शुरुआती लक्षणों जैसे मल में खून या पेट दर्द को अक्सर डॉक्टर ये कहकर नजरअंदाज कर देते हैं कि इसके लिए वो बहुत छोटे हैं। आपने कभी सुना डॉक्टर को ऐसा कहते? कहते हैं, जरूर कहते हैं। जिनके पास इस उम्र के बच्चे हैं तो लोग उनको कहते हैं कि भाई अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आप भी तो उस उम्र से गुजरे हो, आपको भी शायद डॉक्टर कभी कहा होगा कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती आपको। तो युवाओं में बढ़ता मोटापा कॉलन कैंसर का प्रमुख कारण बनता है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि युवाओं में शराब पीने की आदत भी जल्द मृत्यु का जो कारण बनता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस कैंसर से बचाव करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना और तनाव को कंट्रोल करना जरूरी है। तनाव, समझ गए ना? हाँ जी, तो ये सब कहा जा रहा है, हमने सुना है ये कहते हुए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने सोचा कि चलो आपको बताते हैं कि ऐसा कहा जाता है, मैं तो नहीं जानती मगर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस कैंसर से बचाव करने में 4 फलों का सेवन असरदार साबित होता है। मैंने कहती हूँ, ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा है। ये है कि तरबूज का सेवन करें। गर्मी में तरबूज का सेवन ना सिर्फ बॉडी को हाइड्रेट रखता है बल्कि बॉडी को हेल्थी भी रखता है। और खाने में मजेदार इस फल का नियमित सेवन करने से कोलन कैंसर के खतरे को लगभग 26% तक कम किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। और सेब का खाना, सेब यानी एप्पल्स का सेवन करने से बीमारियों से बचाव होता है। ये बहुत दिनों से हम सुनते आए हुए हैं ना कि एक एप्पल रोज खाने से हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो सेब में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है और अधिक मात्रा में सेवन करने से कोलन कैंसर का खतरा 25% तक कम होता है। ठीक है, और कीवी, कीवी फ्रूट जो न्यूजीलैंड में बहुत मशहूर है, कीवी का सेवन करें। विटामिन सी से भरपूर कीवी का सेवन करने से बीमारियों से बचाव होता है और इस फल को रोज खाने से कोलन कैंसर का खतरा, ये कहते हैं, 13% कम हो सकता है। और क्या है, संतरे, ग्रेपफ्रूट, नींबू और लाइम जैसे सिट्रस फ्रूट का सेवन करने से कोलन कैंसर का खतरा लगभग 9% तक कम हो सकता है। ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके फ्री रेडिकल्स को बेअसर करते हैं और डीएनए को नुकसान से बचाते हैं। तो देखिए, ये थी कुछ बातें जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिधर सुनो उधर कैंसर कैंसर कैंसर, ये एकदम दिमाग खराब हो जाता है। सो आप कुछ भी हो, इसकी तो अभी ऑफ कोर्स बहुत कम इलाज पता चल पाया है, मगर फिर भी आप अपनी तरह से बचाव करिए, किसी ना किसी तरह से अगर हो सके तो लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो इनमें से जो भी मोतियां आप चुनना चाहे चुन सकते हैं, जो आपको ठीक लगे ना। अगर आपको ना ठीक लगे तो प्लीज़ आप बेशक इसे बेअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद आपके लिए थी ही नहीं। तो अपने डॉक्टर के साथ जो भी आपकी सिम्टम्स हो, थोड़ी भी हो, आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कीजिए और डॉक्टर को डॉक्टर को पुश कीजिए कि भाई मुझे ये टेस्ट दीजिए वो टेस्ट दीजिए, क्योंकि डॉक्टर तो कभी कभी कह देते हैं कि नहीं नहीं आपको ये कहाँ हो सकता है। सो चलो एक और गीत सुनते
1: संग यारा,
0: फिल्म रुस्तम का गीत हम सुनते हैं।

हाँ जी, एक बार फिर करती हूँ आपका स्वागत भाई। देखिए, नई सुबह बहुत कुछ लाती है ना, बहुत कुछ लाती है नई सुबह। हर दिन नई शुरुआत का होता है, हर दिन एक नई शुरुआत होता है ना, जो ढेर सारे सपनों को पूरा करने की उम्मीद लाती है। नई सुबह नई उमंगों के साथ। और अगर अभी अभी आप अभी भी उठे नहीं हो, खाट पर ही हो, सोच रहे हो कि क्या करेंगे उठकर, दिन भर क्या करेंगे, भाई उठिए, सूर्य जी मेहरबान है हम पर, कहीं सूर्य जी मुस्कुराना बंद कर देना तो फिर क्या होगा। ठीक है, सो उठिए एंड अपने दिन को एनर्जी के साथ शुरू कीजिए। एकदम बैठ कर कोई फायदा नहीं है ना, सो ऐसा करिए आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा। एंड इसी अंदाज में हम आपके लिए पेश करते हैं, इसी के साथ इस अंदाज में पेश करते हैं एक फिल्म सिम्बा का नगमा। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह एक साथ इस फिल्म में दिखे थे।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं सुबह का सफर, रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर। और आज शुक्रवार का दिन है और बहुत ही खुशहाल एंड बहुत ही खुशनुमा दिन है। और उम्मीद है कि आप लुक फोर्ड कर रहे होंगे अपने वीकेंड के लिए, और दफ्तर तक बस पहुंचने ही वाले होंगे या पहुंच भी गए होंगे। मगर जो भी काम आपको दिया जाता है उसे बहुत ही सही ढंग से निपटाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मैं कहना चाहती हूँ, अगर अभी अभी आप जुड़े हुए हमारे साथ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, हर सुबह आपकी इतनी सुहानी हो जाए, गम की हर बात पुरानी हो जाए। दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन, दे जाए इतनी खुशियाँ ये नया दिन, कि खुशी भी आपकी दीवानी हो जाए। ठीक है, चलो एक और गीत सुनते हैं। लगभग 15 मिनट ही बचे हुए हैं आपके साथ। होले होले आपका सफर कट ही गई होगी ना, या बस कटने वाली होगी हमारे साथ। मैं आपकी हम सफर आज शुक्रवार, शशि जोखन, रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर।

जैसे हमने कहा कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचे हुए हैं, 10 मिनट बाकी है। चलते हैं फिल्म सांवरिया की ओर। संजय लीला भंसाली की ये फिल्म इसी फिल्म से ये नगमा

चलो, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आई होगी। और ऑफ कोर्स अभी कुछ ही देर में आ जाएगी सताक्षी आपका साथ देने के लिए, सो आप उनका भी साथ दीजिए।

जी, सो इसी तरह आप भी बस कार्यक्रम सुनते ही रहिए, रेडियो ब्रिजवानी का कार्यक्रम, वन आफ्टर द अदर प्रोग्राम आते ही रहेंगे। हाँ अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, सो शायद इसके बाद एक और नगमा, मगर अगर नहीं तो आपने साथ दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एंड इसी तरह साथ देते ही रहिए, मैं अब आऊंगी वापस रविवार को, ठीक है? 5 से 7 बजे शाम तक।

ठीक है, चलो इस गीत को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। आपने हमारा साथ दिया एक बार फिर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी गीत छोड़े जा रही हूँ, जिंदगी से प्यार करिए जिंदगी, आई लव यू जिंदगी। बहुत ही खूबसूरत जिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल के बाद हमें ये जिंदगी मिलती है ना। सो खुश रहिए, औरों को भी खुश रहने का मौका जरूर दीजिए।

नमस्कार, आदाब, वेलकम। एक बार फिर से एक नई सुबह हो चुकी है और इस नई सुबह के नए से आगाज के साथ आपके साथ जुड़ चुकी है आपकी सताक्षी। जहाँ नया सा दिन है, नई खूबसूरती है, नए गोल्स हैं, नए सपने हैं और इन सपनों को बेटर तो हमें बनाना है। वैसे इस सुबह कैसे हैं आप सब? देखिए, अगर अभी तक आप ब्लैंकेट के अंदर हैं और क्लॉक देख रहे हैं एक आंख खोल के कि बाहर निकले कि ना निकले, तो भाई उसे बंद कीजिए, अलार्म को बंद कीजिए, साइड में रखिए और उठ जाइए, ठंडी हवा का झोंका फील कीजिए, विंडो पर जाइए, अपनी विंडो को ओपन कीजिए और एहसास में डूबिए कि यार ये सुबह कितनी खूबसूरत है और इस सुबह के साथ आपका दिन कितना बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल बहुत कुछ करना है, बहुत सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाते जाना है, लेकिन उसकी शुरुआत इस अगले ट्रैक के साथ होनी चाहिए, है ना? तो एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी पर। बहुत जबरदस्त किस्से आपके साथ बांटे जाएंगे इस ट्रैक के उस पार। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी।